नजर मुझे तो देती है क्यों तेरे यहाँ तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठों पे सिए जा।

चुराए रस लिया तूने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूली नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आके बिताए तेरे लिए मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने चुने। बोले बोले बोले बोले बोले।

तेरा कौन सी है मंजिल, ओ मेरा दिल मेरा गीत तेरे दिल की पुकार है। आज जहाँ मैं हूँ वही तेरा प्यार है, मेरा दिल है तेरी पुकार है, जहाँ मैं हूँ वही तेरा प्यार है।

सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में, जरा जरा

खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।

आग, कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर, रौनकें। कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम, कौन हो तुम?

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।